0: और मैं पाचो
1: इटीनो और रेडियो यूं ये करे वेर क्वारो
0: बीमार मैं पाचो
1: इटीनो और रेडियो